0: हो जाते हैं, लेकिन उसको फिर डिजर्व करना, बजाय कि अब ये मुझे मिल गया है तो आप, मैंने जितने लोगों को देखा है और स्पेशली अभी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वहाँ पर मैंने देखा और मैं अपने इर्द गिर्द भी देखता रहता हूँ, क्योंकि लोग तो हम वही हैं और वही चीज़ें हम जो लेके आए हैं उसी को परवान चढ़ाते रहते हैं, नई कोई चीज़ ना करते हैं ना समझना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोट की हैं कि इसीलिए हम लोग, क्योंकि हम, इसीलिए रब कहता है तुम नाशुक्रे और बेसब्रे हो, वो वैसे नहीं कहता, उसने बनाया है हमको, जो नाशुक्रे और बेसब्रे होना बाय डिफ़ॉल्ट अगर है तो इसमें से सब्र करना पड़ेगा। अपनी जो हैवानी जबिल्लत, इंसान किन चीज़ों से मिलके बने, रब ने हमें क्या कहा है, मैंने इंसान को कैसे पैदा किया, गीली मट्टी से जब हमको पैदा किया गया तो उसने कहा मैंने तुम्हें हैवानी हालत में पैदा किया, बाकी हैवानों की तरह, जैसे बाकी हैवान पैदा हुए तुम्हें भी पैदा किया, लेकिन उसके बाद जब रिफाइंड होते होते एक ऐसी जगह आई जहाँ तुम फुली रिफाइंड हो गए, तो मैंने तुम्हें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ रूह की सूरत में जब मैंने तुमको उसके अंदर वो जो कमाल है वो जब आपको दिया इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, तो मिलकर तुम बेस्ट ऑफ द क्रिएशन बने। तो अब जब हम हैवानी हालत में, जिस्म को क्या चाहिए, वो क्या फिल्म की क्या कमाल लाइन थी, ये जिस्म सिर्फ भूख जानता है, हम लोग सिर्फ भूख हवस, पैसा अच्छा खासा जमा हो जाता है लेकिन और पैसा, इसी तरह खाते हैं तो खाते चले जाते हैं, पीते हैं तो पीते चले जाते हैं, ड्रंक हो के हालात उल्टियां किए जाते हैं लोगों के ऊपर और अच्छा खासा बंदा जो है वो जोकर लगने लग जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह वो हैवानी हालत में होने की ये निशानी है कि करते हैं तो करते चले जाएं और रुके ना कहीं, देखें ना कहीं, सोचें ना कहीं, समझें ना कहीं। वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म को जितना खाना चाहिए उतना, जितना ओढ़ना बिछोना और बेसिक चीज़ें चाहिए उतना, बाकी रूहानी जो हालत में हम हैं उसके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि हम किसी चीज़ में एक्सेलेंस अचीव करें, जो रब हमसे चाहता है कि बेस्ट रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट बन सकें, जो इतना कुछ फील कर सकता हो, जो इतना कुछ देख सकता हो, जो या रब मुझे वो कुवते मोजा नुमाई दे, जो कुछ मैं सुन रहा हूँ सभी को सुनाई दे। तो वो इंसान जितना रिफाइंड होता जाएगा उतना उसको चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, उसके गिले शिकवे रब से ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, लोगों से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उसको एग्जैक्टली समझ आ गई कि कौन कितना कर सकता है और कौन कितना नहीं कर सकता और आपने कहीं पर कुछ और करना है। सो ये गिले शिकवे, ये विक्टिम मेंटालिटी, ये सब ख़त्म हो जाएगा, ये इनसिक्योरिटीज़, ये कॉम्प्लेक्सेस, मुझे ऐसा फील करा दिया, मुझे वैसा फील करा दिया, ये सारी फजूलियात से आप बाहर निकल आएंगे जब आप हैवानी हालत से बाहर निकल कर जो रूहानी थोड़ी सी आपकी हालत है उसमें जाने की कोशिश करेंगे। एंड आई डू अंडरस्टैंड इट्स अ मोमेंट्री अफेयर, वो कभी कभी होता है, हम दोबारा वापस चले जाते हैं उसी हैवानी हालत में, क्योंकि दोनों के अंदर एक फाइन बैलेंस है जिसकी वजह से हम वो बैलेंस को रखते हैं तो हम ज़्यादा देर तक उन मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं जो रूहानी हालत है हमारी, और फिर हम वापस हैवानी हालत, क्योंकि जिस्म के भी कुछ तकाजे हैं, उसकी भी कुछ नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो भी एक जहन है उसके साथ जुड़ा हुआ जो दुनिया को देखता है, जो सब करते हैं वो करना चाहता है ताकि उसको एक्नॉलेजमेंट मिले, उसको मिले कि पता लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन ये अकेला ना होने के चक्कर में, सब के साथ जाने के चक्कर में हम कहीं के नहीं रहते, ना हमारी कोई डायरेक्शन रहती है, ना कोई डेस्टिनेशन हमारी रहती है, इवन रास्ता भी नहीं रहता हमारा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा लोगों के साथ चलें, दुनिया के साथ चलें, इसीलिए कहा गया दुनिया के लिए उतना कर जितना तुझे उसमें रहना है, लेकिन बाकी उस दुनिया के लिए भी साथ कर जिसमें तुझे परमानेंट रहना है। इट्स अ नो ब्रेनर, इतनी सी सिंपल सी बात है। और उस दुनिया के लिए कैसे करना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के रहमानियत में नहीं करना, इसी दुनिया को इस तरीके से डील करना है कि उस दुनिया का सामान बन जाए और इस दुनिया की राहत बन जाए, इतनी सी बात। और इसके बीच में कोई किसी से कुछ नहीं ले रहा, हम रब का नाम लेते हैं या दीन का नाम लेते हैं, लोग भागना शुरू हो जाते हैं, कहीं मुझे सब कुछ त्याग देना पड़ेगा, कुछ किसी को नहीं छोड़ना पड़ेगा। इसी दुनिया में, इन्हीं घरों में, इन्हीं बेडरूम्स में, इन्हीं ड्राइंग रूम्स में, इन्हीं अच्छी अच्छी गाड़ियों में, इन्हीं अच्छे अच्छे जहाज़ों में, इन्हीं वेकेशंस के ऊपर आप वो सारा काम कर सकते हैं जो दीन के अंदर, जो रब के बेसिक चीज़ें हैं। आपको अपनी नीयत सही रखनी है, आपको देने वाला बनना है, आपको गलतियों से, बर्बादियों से और दूसरों को बर्बाद करने से दूर रहना है, उनकी इज्जत के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करना, अपनी हद से बढ़कर कोई, अपनी हद से बाहर कोई चीज़ नहीं करना, जालिमों में से हो जाएंगे, इसी को ही ज़िंदगी कहते हैं। और इसी के बीच में आपकी अगली दुनिया का सामान भी हो जाता है और ये दुनिया भी आपकी बड़ी अच्छी गुजर सकती है। मुझे आज तक नहीं समझ आया कन्फ्यूजन कहाँ है, कन्फ्यूजन पता है कहाँ है, बातें करते करते समझ, सब हमारे दिमाग में, सारे डर अंदर के हैं, बाहर दुनिया कुछ नहीं। कितना अच्छा सवाल किया आप, कैसे कर लेती हैं आप ये कमाल।
1: अजाना

अगर आपको शक है कि आपके पड़ोसी किसी मुश्किल में हैं, कोई चोर या डाकू इनके घर में घुस गया है या इनके घर का सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो गया है, तो फौरी तौर पर पुलिस को आगाह करें। आपके इस अमल से आपके पड़ोसी की जान या इनका साजो सामान बच सकता है। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

अब अगली बात हम करेंगे एहतिना में हिदायत और इल्म का फर्क। देखें, अगर मैं आपको कहूं कि कोई आपसे पूछे ये आज का प्रोग्राम कहाँ हो रहा है और कहे वो उधर वो एक सेंटर है वहां पर हो रहा है रवात में, और वो आपको यहां पहुंचने की हिदायत देते हैं, उसको भी हिदायत ही कहते हैं ना। आपने वो हिदायत लिख ली, लेकिन अगर मैं कहूं कि उसने आपको यहां पहुंचने का इल्म दिया, मालूमात दी, वो भी बात ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हिदायत और मालूमात एक ही बात है। आप मुझे हिदायत दें मैं कौन सा कोर्स लूं, प्रोफेसर से पूछा जाके, मैं कौन सी किताब पढ़ूं, और जब आपको वो हिदायत देगा वो मालूमात ही दे रहे हैं ना। तो बहुत सारी मिसालों में हिदायत और इल्म में कोई फ़र्क नहीं होता, एक ही बात होती है। किसी को हिदायत देना और किसी को इल्म देना एक ही बात होती है। लेकिन कुरान ने हिदायत और इल्म में एक तरफ तो एक ही बात, एक पहलू से एक ही बात है, और एक और पहलू से दो कम्प्लीटली पूरी तरह से मुख्तलिफ बातें हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जैसे बनू इसराइल के उलमा, उनके बारे में कुरान ने कहा है कि ये इल्म वाले लोग हैं, इल्म बहुत है उनके पास। क्या नहीं है? हिदायत नहीं है। अगर इल्म और हिदायत एक ही चीज है, तो अगर उनके पास इल्म बहुत है तो इसका मतलब है उनके पास क्या बहुत है? हिदायत बहुत है। इबलीस के पास बहुत इल्म है, बहुत इल्म है। उसके पास सारे अंबिया का इल्म, बल्कि उन अंबिया का भी इल्म जिनको हम नहीं जानते, उनकी कौमों को भी बर्बाद करने पहुंच गया था। उसको हम किस्सा आदम पढ़ते हैं, वो किस्सा आदम में खुद था, उसको फर्स्ट हैंड नॉलेज है, बराह रास्त इल्म है उसको। हम मलाइका के बारे में सीखते हैं, वो अब मलाइका से उसकी मुलाकात हो चुकी है, उनके साथ में वो रह चुका है, यानी उसके इल्म में कोई कमी नहीं है। किस चीज में कमी है? हिदायत पर। तो एक पहलू से तो हिदायत और इल्म एक ही चीज है, एक और पहलू से हिदायत और इल्म दो अलग अलग मुख्तलिफ कंप्लीटली अलग चीजें हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपसे इल्म मांगो, मुझे ये बता दें, मुझे ये बता दें, मालूमात मांगो, इल्म मांगो, एक दफा आपने वो इल्म हासिल कर लिया तो अब वो आपका हो गया। आप इल्म को ओन कर सकते हो, आपने सीख लिया एक दफा, दो और दो जमा चार इल्म है ना। अब आपको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप उससे मजीद और इल्म सीखें और मजीद सीख लेंगे, उसके बाद मजीद और फिर मजीद और मजीद और, इसी को तालीम कहा जाता है। पहली जमात में जो सीखा उसकी बुनियाद पर दूसरी में मजीद सीखा, दूसरी में पहली वाली बात नहीं हो रही, दूसरी वाली बात हो रही है, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, पीएचडी तक पहुंच गए। जब पीएचडी में पहुंचे तो बैचलर्स वाली बात नहीं हो रही, आगे बात हो रही है। इल्म के मराहिल से जब इंसान गुजरता है ना, तो पीछे नहीं जाता, हमेशा आगे जाता है। जिसके पास ज्यादा इल्म है वो, आप उसके सामने एक नई दुनिया खुल गई, अब वो उसके बारे में सीखना चाह रहा है। वो एक दफा वो दरिया वो पार कर ले, उसके सामने एक और दरिया आ जाता है, अब वो उसको पार कर रहा है, यही बात है ना। तो इल्म में क्या होता है? तरक्की। इल्म में हमेशा होती है तरक्की। लेकिन हिदायत में ना कभी ऊंचा, कभी ऊंच, कभी नीच, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी आगे, कभी पीछे। इसीलिए वो हिदायत ऐसी चीज है, पहली तो आप उसको ओन नहीं कर सकते। आप इल्म को किसी हद तक ओन कर सकते हो, मेरा है ये इल्म, मुझे इल्म है इसका। आप जबान सीख तक सकते हो, आपने जबान सीख लिया, आप उसको ओन करते हो, अब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी एक ओनरशिप है उसके ऊपर। लेकिन कुरान जिस चीज को हिदायत कह रहा है ना, वो इल्म से कहीं ज्यादा है, कोई और ही चीज है जिसको आप कभी ओन नहीं कर सकते। और क्योंकि आप उसको ओन नहीं कर सकते और आपको उसकी जरूरत है, तो आपको वो बार बार मांगनी पड़ती है, और एक दफा आपको दे दी जाए तो वो आपके पास हमेशा के लिए नहीं रहती। इल्म की तरह, इल्म आपको एक दफा दे दिया जाए ना, आपके पास ही रहता है। इल्म एक दफा मिल जाए तो रहता है, अगर आपको खासकर आपको उसमें दिलचस्पी हो और आपने ठीक तरीके से सीख लिया हो, तो वो आपके पास ही रहेगा इल्म, सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा वो इल्म। किसी ने एक दफा ऑयल चेंज करना सीख लिया या घर का दरवाजा फिक्स करना सीख लिया, अब उसको पता है, उसको बार बार सीखने की जरूरत नहीं है, उसके पास वो इल्म है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस सूरत में जो हमसे मुतालबा करने को का सिखाया है ना, ए दिना
हिदायत दीजिए, हम कितनी दफा मांगते हैं। कम अज कम दिन में अगर 5 वक्त का नमाजी है और सिर्फ फर्ज नमाज अदा कर रहा है, सिर्फ फर्ज 17 मरतबा हिदायत का मुतालबा कर रहा है। और ये मुतालबा हम सिर्फ अल्लाह ताला से ही नहीं कर रहे, बल्कि हम ये की सुन्नत पूरी कर रहे हैं, और ये सुन्नत है हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज, और वो हमसे कहीं ज़्यादा नमाज पढ़ते थे, यानी हमसे कहीं ज़्यादा मरतबा अल्लाह के रसूल अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, हिदायत। इंसानियत का हादी, इंसानियत को हिदायत देने वाला इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से बेशुमार मरतबा हर रोज क्या मांग रहा है, हिदायत। इल्म तो है उनके पास, और मैं तो ये भी कहूंगा कि हिदायत भी उन्हीं के पास है, लेकिन फिर भी वो हिदायत क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको मिसाल के जरिए से समझाता हूं। कुरान ने कुरान की अपने कुरान को भी हिदायत ही कहा है, हुदा कहा है, और कुरान ने कुरान की मिसाल समझाने के लिए पानी की मिसाल दी है। तो कुरान का नाजिल होना बारिश के नाजिल होने से उसकी तशबीह की गई है कुरान के अंदर। पानी के बारे में सोचते हैं, प्यास लगती है, इंसान क्या करता है, पानी पीता है। एक दफ़ा पानी पी चुका तो ये नहीं कहता चलो पानी का तकाजा तो पूरा हो गया, अब किसी और चीज़ की तरफ जिंदगी, नहीं नहीं नहीं, दो तीन घंटे बाद क्या होना है, फिर जिस्म खाली होना शुरू हो गया पानी से, दोबारा पानी, फिर दो तीन घंटे बाद दोबारा पानी, फिर दोबारा पानी, फिर दोबारा पानी। आप अपने जिस्म को बरकरार नहीं रख सकते, ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकती बगैर पानी के। इसी तरह मेरी रूहानी ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकती बार बार क्या चीज़ लेने से, हिदायत। एहतिना। इल्म रहेगा, और पता है इल्म किसी के पास बहुत ज़्यादा भी हो जाए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास हिदायत है। मुझे जितनी हिदायत की ज़रूरत है उतनी आपको है। आप मुझसे, आप में से कई मुझसे कहीं ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, आप में से कई कम हैं, लेकिन हिदायत का मुतालबा हम सबका एक ही जैसा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसमें आपकी डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है। कुरान का हिफ्ज़ करना इल्म है या हिदायत है, इल्म है। इल्म के ज़्यादा होने से हिदायत की गारंटी नहीं मिलती। हिदायत का रास्ता आसान होता है, उसमें कोई शक नहीं। अब आपके पास वो मालूमात हैं जिनके ज़रिए से आप हिदायत ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास असल में हिदायत है। आपके पास मालूमात हैं, मालूमात हैं, हिदायत और चीज़ है। हिदायत मांगनी पड़ती है, हिदायत कभी आप ओन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये कभी नहीं कह सकता अल्लाह का शुक्र है पिछले साल अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, अब मेरी दुआ है कि बाकी फैमिली को भी हिदायत दे दे, क्योंकि मुझे तो देती अब मेरी जेब में है, इन बेचारों को भी मिल जाए तो इनका भी भला हो जाए। मेरे जहन में कभी आएगा नहीं कि मैं अब हिदायत के स्कूल से ग्रेजुएट हो चुका, मेरी हिदायत की डिग्री है, बाकी बेचारे मिस्कीन अब इनको देने की ज़रूरत है। ये जहनीत आएगी नहीं मेरे दिमाग में कभी, क्योंकि हर नमाज में मैं इस बात को अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले हिदायत की। अच्छा, नमाजें हमारी कम अज़ कम 5 हैं, कुछ कुछ घंटों के वक्फे से। क्या सिखाया जा रहा है इस, और नमाज की असल क्या है? यहाँ तक के हदीस कुदसी में फातिहा को सलात कहा गया है, फातिहा को ही नमाज कहा गया है, और इस जो नमाज की बुनियाद है वो फातिहा है। और इस फातिहा में जब मैं अल्लाह ताला से हिदायत मांग रहा हूँ, पता है इसका उसके मकासद में से एक मकसद क्या है? या अल्लाह, ये जोहर की नमाज होने लगी है, जोहर और असर के दरमियान मेरे सामने बहुत सारे फैसले करने को होंगे, छोटे और बड़े, इधर देखूं या इधर ना देखूं, ये कहूं या ये ना कहूं, ये जवाब मैसेज में भेजूं या ना भेजूं, इस तरह से इस डील को हाँ करूं या ना करूं, इसके बारे में किसी से और बात करूं या ना करूं, फैसले करने होते हैं ना ये हर लम्हे में, और उस हर फैसले के लिए या अल्लाह मुझे क्या दे, हिदायत दे। और फिर ये जो जज्बा होता है हिदायत तलब करने का, वो कुछ घंटों में वो सूख जाता है, और फिर नमाज का टाइम आया, फिर क्या पूछा, हिदायत दे दे मेरे रब, अब मगरिब तक जो फैसले करने हैं उनमें हिदायत होगी,
उम्मीद है कि हिदायत होगी अगर दिल से मांगी है तो। फिर एक और इसके साथ एक और बात याद आ गई, मांगने मांगने में फर्क होता है नहीं। अगर कोई आपसे कहे पानी ला दे और आप भूल गए, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने मांगा तो था लेकिन कोई इतनी डेस्परेट सिचुएशन नहीं थी। और कोई आ रहा है बहुत प्यास लगी है, पानी दे दे प्लीज प्लीज पानी, लेकिन फिर आप मौसम पे बहस नहीं करोगे, आप क्या अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मैं भी लेके आता हूं। जिस तरीके से इंसान मांगता है ना, उससे पता चल जाता है उसको किसकी कितनी जरूरत है। अगर हम अल्लाह ताला के सामने नमाज में खड़े हैं और कह रहे हैं इन सिरात मुस्तकीम, वरना वो रहमत हो ही नहीं सकती, ये भी है इसके अंदर जिन अल्फाज में अल्लाह ने कहा है इहदिनस सिरात मुस्तकीम। अच्छा, आप अरबी में मुख्तलिफ असालीब मुमकिन है, आप ये भी कह सकते हैं इहदिना इलस सिरात, ये भी कह सकते हैं इहदिना अलस सिरात, ये भी कह सकते हैं इहदिना लिस सिरात, और ये भी कह सकते हैं इहदिनस सिरात, जैसे फातिहा में है। यानी मुख्तलिफ हरूफ इस्तेमाल हो सकते हैं, हर एक हर्फ का अपना मकसद है। मैं आपको इसका थोड़ा सा मुख्तसर तरीके से इनका फ़र्क समझा देता हूँ। इहदिना इलस सिरात है, अगर मैं कहूँ मुझे नहीं पता कि जो हस्पताल है वो किधर है, तो आप कहें यहाँ से सीधा जाएं, फिर राइट टर्न लें, फिर लेफ्ट टर्न लें, फिर 5 किलोमीटर जाएं, अस्पताल आ जाएगा। यह है इला, उसकी तरफ हिदायत देना। एक एक डेस्टिनेशन है, एक आपकी मंजिल है, उस मंजिल की तरफ किसी को हिदायत दी जाए ना, उसके लिए इला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो कुरान ने जब जन्नत की तरफ पहुँचने का रास्ता समझा दिया ना, वो इला है, यहदीहिम इला तरीक़ मुस्तकीम। ये इला भी इस्तेमाल हुआ है कुरान में, ठीक है ना। तो इला से मुराद होगी मालूमात। जब इला आएगा ना, तो वो कौन सी मालूमात हैं जो मुझे अपनी मंजिल तक ले जाएंगी। दूसरा लफ्ज़ है अलस सिरात, इहदिना अलस सिरात। अलस सिरात मुराद है मैं रस्ते में हूँ और रस्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं, और रस्ते में चलते हुए जो रुकावटें हैं उनको मैं कैसे, उनसे मैं कैसे गुजरूँ फंसे बगैर या गुमराह हुए बगैर। यानी रस्ते पर चलते हुए क्या क्या हिदायत मुझे फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे कहें हाँ वो हस्पताल तो 5 मील दूर है, लेकिन रस्ते में एक रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो ज़रा आप लेफ्ट पे रह जाना, या फलाना एक आएगा वो ये इशारा आएगा उस पर ज़रा साइड से गुजर जाना। ये क्या है इहदिना अला अस्सिरात, इहदिना अला अस्सिरात, ये दूसरा है। तीसरा क्या है इहदिना लिस सिरात, इहदिना लिस सिरात। लाम इस्तेमाल होता है, लाम हर्फुल गाया इसको अरबी में कहते हैं, आखिर तक पहुंचाने के लिए। यानी मैं किसी से कहूं कि सर आपने हस्पताल की डायरेक्शंस तो बहुत अच्छी दे दी, मेहरबानी करके आप मेरे साथ अगर गाड़ी में बैठ जाए ना और मुझे वहां तक पहुंचा दें, या आप मेरे साथ फोन पर रहें जब तक मैं पहुंच नहीं जाता। तो क्या किया, जो इंसान आपके साथ सारा रास्ता रहे जब तक आप मंजिल तक पहुंच ना जाए, उसने क्या किया इहदिना लिस सिरात, हमें आखिरी मंजिल तक पहुंचने तक हमारे साथ, हमें गाइड करते रहें, हमारे साथ ही रहें। हम कुरान में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। जन्नत के बारे में कहा जाता है, जन्नत में पहुंचने के बाद अहले ईमान कहेंगे अल्लाह हमें उन सब में से बनाए, वो हम कहेंगे अल्लाह ताला के लिए हम्द है जिसने हमें यहाँ तक हिदायत दी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना ली हाज़ा। लाम इस्तेमाल हुआ है, क्यों, क्योंकि इशारा इस बात की तरफ किया जा रहा है अल्लाह ताला हमारे साथ पूरा रास्ता था यहाँ तक पहुँचाए, यहाँ पहुँचाने तक, यह है ली। अच्छा, फातिहा में ना इहदिना इलस सिरातिल मुस्तकीम है, ना इहदिना अलस सिरातिल मुस्तकीम है, ना इहदिना लिस सिरातिल मुस्तकीम है, बल्कि कोई हर्फ है ही नहीं, सीधा सीधा है क्या इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम, बगैर हर्फ के। तो क्या मायने हुए, इसको कहा जाता है अलउमूम अलिश्माल, यानी तमाम हर्फ शामिल हैं। इनमें से अगर एक हर्फ भी इस्तेमाल किया होता ना, तो बाकियों का हक अदा ना होता। सुबहानअल्लाह, क्या मालूमात चाहिए जन्नत तक पहुंचने के लिए, इहदिनस सिरात शामिल है।
रस्ते में क्या क्या रुकावटें आएंगी, उनको कैसे समझा जाए, इहदिना अला सिराज शामिल है। अल्लाह ताला हमारे साथ सारा रास्ता हमारे साथ रहेगा, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, उसकी मैयत उसकी सोबत हमारे साथ रहेगी, इहदिना लिस सिराज, और वो सब शामिल करके एक ताबीर में इहदिना सिराज।

जिस रास्ते पर लोग चलते रहे ना बार बार, और उस पर कदम के निशान बन जाए और फिर उस पर घास उगनी बंद हो जाए और पता चल जाए कि इस तरफ से लोग चलते रहे कई दफ़ा, उसको तरीक कहा जाता है। यानी लोगों के ज़्यादा चलने की वजह से वो तरीक बन गई, ठीक है, उसे तरीक कहते हैं। और ये आमतौर पर छोटे रास्ते होते हैं, ये लंबे रास्ते नहीं होते, ये छोटे रास्ते होते हैं। और जो छोटे रास्ते होते हैं वो आमतौर पर आपको एक बड़ी रोड की तरफ ले जाते हैं। उससे जो ज़रा एक बड़ी साइज की रोड होती है उसको सबील कहा जाता है। यानी इस तरह समझ लें कि जो तरीक है वो आपको सबील तक ले जाएगी, तरीक सबील तक ले जाएगी। अच्छा, सबील क्या है? सबील जो है उसकी जमा होती है सुबुल, सबील और सुबुल। सूरतुल अलकबूत में अल्लाह कहते हैं वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। तो तरीक छोटा और बहुत ज़्यादा चला हुआ, और सबील उससे ज़रा बड़ा रास्ता। अच्छा, और सबील की जमा क्या होती है, मैंने क्या कहा था? सुबुल। अच्छा, तरीक की जमा है तराइक और तुरुक, दोनों तराइक कुरान में इस्तेमाल हुआ है, कुन्ना तराइका क़िदादा सूरतुल जिन में। अच्छा खैर, सिरात अजीब लफ्ज है, इसकी जमा नहीं है। तरीक की जमा है तुरुक और तराइक, सबील की जमा है क्या? सुबुल। सिरात की जमा नहीं है, क्यों? ये सिरात ऐसे रास्ते को कहते हैं जिसके लिए कोई अल्टरनेटिव रोड नहीं है। जैसे दो आइलैंड हैं उनके दरमियान एक ही ब्रिज है, वो ब्रिज क्या होगा फिर? सिरात। क्योंकि उस उधर पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है आपके पास, एक ही रास्ता है। तो तरीक से इंसान सबील पे पहुंचे, और तमाम सबीलें जाके कहाँ मिलेंगी? सिरात पे। और हो सकता है कि आपका शुरू होने वाला रास्ता कोई और तरीक या कोई और सबील हो, या कोई और सबील हो, कोई और सबील हो, लेकिन बाद में जाकर सब एक जगह कहाँ मिलेंगे? सिरात के ऊपर। ना सिरात का लफ्ज़, क्योंकि उसकी जवा नहीं है, उसके और भी मायने हैं। सिरात का लफ्ज़ असल में आता है सुरात से, पेश के साथ सुरात। और सुरात अरबी में कहते हैं उनकी मुख्तलिफ किस्म की तलवारें होती थी, कुछ तलवारें जो हैं वो ज़रा मुड़ी हुई होती हैं और कुछ तलवारें बिल्कुल सीधी होती हैं। जो जो जो मोटी हो, चौड़ी हो और सीधी हो, उसे सुरात कहा जाता है। उसी से निकला लफ्ज़, जो सड़क कुशादा हो और बिल्कुल सीधी हो उसे सिरात कहते हैं, और उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। और तमाम छोटी छोटी सड़कें तरीक और सबील उसी में आके मिलती हैं। इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, एक दफ़ा एक रास्ते पर इस रास्ते पर इंसान आ जाए तो उसको कोई मुश्किल नहीं होगी कि अब किस तरफ मुड़ें किस तरफ ना मुड़ें, क्योंकि रास्ता कैसा है? बिल्कुल सीधा है। और इसके अलावा कोई और रास्ता भी है कि बस एक ही? नहीं, एक ही रास्ता है। इसमें एक और बड़ी अजीब बात यह है कि यह रास्ता लंबा होता है, यानी मंजिल तो वाज़ेह है कहाँ है, लेकिन सफ़र लंबा है, सफ़र लंबा है। अब क्योंकि कुशादा है, कुशादा होने में क्या फ़ायदा हुआ, सोचे ज़रा। हाँ, बहुत सारे लोग एक वक्त में सफ़र कर सकते हैं, एक लेन नहीं है, मल्टीपल लेन्स हैं। कुछ लोग इस पे ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, कुछ लोग आहिस्ता चल रहे हैं, कुछ लोग अभी नए नए किसी सबील से जाके इसमें शामिल हुए, कुछ लोग आपसे हज़ार मील पीछे हैं, कुछ लोग आपसे हज़ार मील आगे हैं। आपको कुछ लोग अपने से आगे नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग अपने से पीछे नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग आपसे कई सालों पहले इस पूरे रास्ते से गुजर चुके, आगे आखिर तक पहुँच चुके, आप पीछे रह गए हो। लेकिन मकसद बस एक ही है, ये नहीं कहा या अल्लाह हमें इस रोड पर सबसे तेज़ गाड़ी दे दे, इस रोड पर हमें सबसे तेज़ चला दे। एक बात मांगी है, हिदायत दे दे कि जिस भी रास्ते से हम शुरू हुए हो इस सड़क तक हमें पहुंचा दे। बस एक दफ़ा इस सड़क पर आ गए, जिस रफ्तार से चलना होगा या जिसके साथ चलना होगा उसकी फिक्र हमें कम है। कम से कम क्या है कि हम इस सड़क पर हैं। अब इस सड़क पर आने के बाद कोई हाफ़िज़ कुरान है जिसको अरबी भी आती है, तजवीद भी आती है, आलिम भी है, इस सड़क पर आने के बाद कोई 55 साल ईसाई था, कल मुसलमान हो गया, अब वो सड़क पे, वो पीछे उसको अलिफ बा भी नहीं पता, उसको नमाज भी ठीक से भी पढ़ी नहीं, इंग्लिश में नमाज़

0: है, ठीक है ना। इस सड़क पे कोई 90 साल का है, इसमें सड़क पे कोई 12 साल का है। हर एक की स्पीड मुख्तलिफ, हर एक का लेवल मुख्तलिफ, हर एक का इल्म मुख्तलिफ, हर एक की शुरुआत मुख्तलिफ। कोई किसी सड़क से शुरू हुआ था, कोई किसी सड़क से, किसी का कोई बैकग्राउंड, किसी का कोई बैकग्राउंड, किसी की कोई मुश्किलात, किसी की कोई मुश्किलात। कोई इस सड़क पे दो लोग इकट्ठे शुरू हुए और एक बहुत जल्दी आगे निकल गया और एक आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, कोई बात नहीं, किसी के साथ कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस दुआ में हमने मंजिल की तलब नहीं की, सड़क की तलब की है। अजीब दुआ है, हिदायत मांगी जाती है मंजिल के लिए, हिदायत सड़क के लिए नहीं मांगी जाती है। आप मुझे बता दें सड़क पे कैसे पहुंचूं, आपका मकसद क्या है? बस सड़क नहीं, सड़क से कहाँ जाएंगे, बस आप सड़क पे पहुंचा दें, बाकी मुझे कोई फिक्र नहीं। ये कैसी बात कर रहे हो? कभी भी नहीं होता कि आपकी असल गायत, आपका असल मकसद सड़क हो। आपका असल मकसद होता है सड़क कहाँ लेके जा रही है। लेकिन इस सूरत में हमें किस चीज, हमने क्या मांगा है? अगर मांगना होता, अगर हम कहें असल मकसद मेरा जन्नत है या अल्लाह से मुलाकात है, या अल्लाह मुझे वो रास्ता दिखा जो तुझ तक पहुंचा दे, या मुझे अपने तक पहुंचने का रास्ता बता दे, ये भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। हिदायत किस चीज़ की है? हिदायत मुझे किसी तरह इस सड़क तक पहुंचा दे, बस। अजीब बात है। इससे हमें क्या सीखना है? हमें सीखना यह है कि इस्लाम में, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में मुझे अंजाम से दिलचस्पी कम है, सफ़र से दिलचस्पी ज़्यादा है। मैं अगर दो कदम चला इस सफ़र में और मेरी मौत हो गई, कामयाब हो, अगर मैं हज़ार कदम चला और मौत आ गई, कामयाब हो, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं मैं कितना चला। बस इतना है कि मैं इस सड़क पर था और इस सड़क पर मैं चल रहा था। अब एक अगर ये बात समझ आ गई ना, तो मुझे किसी और से अपने आप को कंपेयर करने की दिलचस्पी नहीं रही। ये तो मुझसे आगे निकल गए, ये तो मुझसे पीछे हैं, इनको भी ना ना ना ना ना। हर एक का अपना पेस है, हर एक की अपनी स्पीड है। बहुत कुछ आदगी है इस रोड में भाई, आप किसी के पीछे नहीं फंसे हुए। कुछ लोग आपके साथ चल सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो करते हैं सपोर्ट आपको। आप एक दूसरे को जो रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उनका आप सामना कर सकते हो। साइड पे और रोड्स हैं, उन पे बड़े प्यारे प्यारे साइंस लगे हुए, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न ले लो, इधर भी आ जाओ थोड़ी देर, हमारे साथ भी थोड़ा टाइम गुजार लो, और आपका दोस्त आपको खींचेगा, नहीं नहीं नहीं चलते रहो। नहीं यार बहुत थक गए, एक एग्जिट तो ले लो यार, थोड़ा सा इस वीकेंड एग्जिट ले लें, उसके बाद तक उनमें बादी ही कौमन सालिह, उसके बाद अच्छे हो जाएंगे ना, चलते रहो साथ। जो साथ होगा ना वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको सीधा चलाता चला जाएगा। ये बहुत खूबसूरत हिदायत है इहदिना सिरातल मुस्तकीम में, लेकिन इसमें सिर्फ बस एक चीज रह गई और वो ये है कि
1: सब्सक्राइब नाउ टू द बगीना YouTube चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। कमिंग अप नेक्स्ट टाइम ऑन आखिरी मौजज़ा।
0: जिस तरह आप अगर ऐनक सनग्लासेस पहनते हो, उसका लाल रंग का शेड हो तो सारी चीज़ें लाल नज़र आती हैं, ब्लू हो तो सारी ब्लू नज़र आती हैं, कुरान हो तो सारी चीज़ें कुरान के लेंस से नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। आपका एक व्यू बदल जाता है, और यही एक बुनियादी मकसद है कुरान का, कि अगर वो नज़र आना शुरू हो जाए तो सीधा रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है, और जो गलत रास्ते हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं दूर से ही। इहदिना सिरातल मुस्तकीम।
2: Next, the Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum. Are you planning on going Hajj soon? If so, here's a quick tip. It is recommended by doctors that you get a full checkup and vaccines to protect you from diseases and illnesses when going Hajj. Jazakallah here for tuning in to Hajj Tips. Continue listening to Inspire FM for more guidance on your deen.
4: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
5: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9am to 9pm. And view online at grandbazaarluton.com.
6: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
7: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Sing each answer, hum each fact, keep your brain on the winning track. Mindful study, stress set free, success will come, you'll surely see. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
8: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
9: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
10: Join Imam Waz for a full hour each week where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
9: Listen, learn and engage. Tune in to Ask Imam where knowledge meets community only on Inspire 105.1 FM.
11: Every Friday at 5 p.m.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Last time on Akhri Mojza.
0: Hidayat sadak ke liye nahi mangi jati. Aap mujhe bata dein sadak pe kaise pahunchu. Aapka maqsad kya hai? Bas sadak nahi, sadak se kahan jayenge? Bas aap sadak pe pahuncha dein. Baki mujhe koi fikr nahi. Ye kaisi baat kar rahe ho? कभी भी नहीं होता कि आपकी असल गायत, आपका असल मकसद सड़क हो। आपका असल मकसद होता है सड़क कहाँ लेके जा रही है। लेकिन इस सूरत में हमें किस चीज, हमने क्या मांगा है? अगर मांगना होता, अगर हम कहें असल मकसद मेरा जन्नत है या अल्लाह से मुलाकात है या अल्लाह मुझे वो रास्ता दिखा जो तुझ तक पहुँचा दे या मुझे अपने तक पहुँचने का रास्ता बता दे, ये भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। हिदायत किस चीज़ की है? हिदायत मुझे किसी तरह इस सड़क तक पहुंचा दे, बस। अजीब बात है।

0: इससे हमें हमें क्या सीखना है? हमें सीखना ये है कि इस्लाम में, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में मुझे अंजाम से दिलचस्पी कम है, सफ़र से दिलचस्पी ज़्यादा है। मैं अगर दो कदम चला इस सफ़र में और मेरी मौत हो गई, कामयाब हो, अगर मैं हज़ार कदम चला और मौत आ गई, कामयाब हो, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं मैं कितना चला। बस इतना है कि मैं इस सड़क पर था और इस सड़क पर मैं चल रहा था। अब एक अगर ये बात समझ आ गई ना, तो मुझे किसी और से अपने आप को कंपेयर करने की दिलचस्पी नहीं रही। ये तो मुझसे आगे निकल गए, ये तो मुझसे पीछे हैं, इनको भी ना ना ना ना ना, हर एक का अपना पेस है, हर एक की अपनी स्पीड है। बहुत कुछ आदगी है इस रोड में भाई, आप किसी के पीछे नहीं फंसे हुए। कुछ लोग आपके साथ चल सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो करते हैं सपोर्ट आपको। आप एक दूसरे को जो रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उनका आप सामना कर सकते हो। साइड पे और रोड्स हैं, उन पे बड़े प्यारे प्यारे साइंस लगे हुए, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न ले लो, इधर भी आ जाओ थोड़ी देर, हमारे साथ भी थोड़ा टाइम गुजार लो, और आपका दोस्त आपको खींचेगा, नहीं नहीं नहीं चलते रहो चलते रहो चलते रहो, नहीं यार बहुत थक गए, एक एग्जिट तो ले दो यार, थोड़ा सा इस बस इस वीकेंड एग्जिट ले लें, उसके बाद तकूनू में बादी ही कौमन सालिहीन, उसके बाद अच्छे हो जाएंगे ना, चलते रहो साथ। जो साथ होगा ना वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको सीधा चलाता चला जाएगा। ये बहुत खूबसूरत हिदायत है इहदिना सिरात अल मुस्तकीम में, लेकिन इसमें सिर्फ बस एक चीज़ रह गई, और वो ये है कि अगर सिरात खुद ही से डिक्शनरी के अतबार से सीधी है तो फिर मुस्तकीम का क्या फ़ायदा? अगर इहदिना सिरात कहा होता तो सीधा रास्ता पहले ही था, और मुस्तकीम से उसके सीधे होने में इजाफा नहीं हुआ। मुस्तकीम असल में कहा जाता है अरबी में इस्तकामा से, कामा से निकला है, जो क़ियाम से मुतालिफ़ है। क़ियाम किस चीज़ को कहते हैं? खड़े होने को। मुस्तकीम है जो वज़ीनु बिलक़िस्तासिल मुस्तकीम, जो स्केल होता है ना, मीज़ान जिससे सौदा वगैरह वे किया जाता है, उसको खड़ा किया जाता है ना, सीधा खड़ा करना। मुस्तकीम है जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, मुस्तकीम ऊपर की तरफ होता है। तो ये सड़क सीधी भी है, कुशादा भी है, और जितना आप इस पे चलोगे आपकी ऊंचाई बढ़ रही है। ये भी एक इसमें इस्तेआरा है, इसमें एक मिसाल दी जा रही है, आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हो। यरफ़ अल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला आप में से जिनका इल्म है और जो अहले ईमान है और जिनको इल्म दिया गया, उनके दरजात को ऊंचा करता रहेगा। आपके दर्जे जितना आप इस रस्ते पर चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप ऊंचे हो रहे हो। आप इस मिसाल को समझो, जितना मैं ऊंचा जा रहा हूं पीछे क्या रह गया? दुनिया और दुनिया वाले लोग जो इस रस्ते पर चलना नहीं चाहते ना, उनसे मेरी दूरी होती चली जा रही है, क्योंकि मैं इस रस्ते पर चल रहा हूं और वो लोग अभी ज़मीन पर हैं, और मैं एक तरह से मेरा उनसे फासला बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब आप इस रास्ते पर चलते हो ना, तो आपकी कंपनी में थोड़ा फ़र्क आना शुरू हो जाता है। आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जब भी आप मिलते हो, आपने बात करनी होती है फैशन के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, मूवीज़ के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर, कुछ 7-8 टॉपिक्स हैं उसी के अंदर, या दोस्तों के बारे में, या फलाने के इंस्टाग्राम के बारे में, या फलाने के टिकटॉक के बारे में, या किसी की गीबत, या किसकी शादी, और किसकी मंगनी, और किसका कितनी अब रस्में कितनी है, 15-16 है रस्में, नहीं अब नंबर इज इंक्रीजिंग, मायू एंड पायू एंड शायू एंड टायू, आई डोंट नो, यही बातें होनी है बस। वापस रास्ते पे चलना शुरू करते हो, वो बातें तो हैं, क्योंकि उसमें दिलचस्पी कम हो जाती है आपकी, आपको एक फासला महसूस होता है कि इस कंपनी में कुछ दिल नहीं लग रहा, कोई या इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि ये बातें मुझे इस रास्ते से खींच रही हैं, मुझे दोबारा नीचे लेके आ रही हैं। वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्दी, लेकिन वो ज़मीन की तरफ रह गया, ज़मीन की तरफ रह गया। वलौ शिअना लरफअनाहु बिहा, अगर हम चाहते तो हम उस इल्म की बुनियाद पर उसको ऊंचा कर देते। कुरान क्या चाह रहा है, हम क्या चाह रहे हैं अल्लाह ताला से? या अल्लाह ताला हमें ऐसी हिदायत दे जिस पे हम चलें तो हम क्या होते चले जाएं? ऊंचे। अच्छा, ऊंचाई का एक और फ़ायदा है, जितना इंसान ऊंचा जाता है उसके व्यू में क्या फ़र्क पड़ता है? ओहो, उसको बहुत आगे की नज़र आती है, उसको बहुत पीछे की नज़र आती है, उसको वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं जो औरों को नज़र नहीं आ रही, उसको नज़र आना शुरू हो जाता है, वो उसका जो मंज़र है ना, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू, वो ऐसा हो जाता है कि जो बाकी ऊपर नहीं पहुँचे हुए ना,
1: वो उसको समझ नहीं पा रहे। वो कहते हैं मुझे ये नजर आ रहा है, कहते क्या पागलवानी बात कर रहे हो, यहाँ तो दरख्त है। नहीं, इस दरख्त के पीछे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पीछे एक दरिया है, उस दरिया के पीछे पहाड़ है। क्या यार, ये रेस्टोरेंट है बस, आपको वो बाकी आगे की चीज नजर ही नहीं आ रही, और फिर पीछे की चीज आपको नजर नहीं आ रही। जो इसका जिसका व्यू ऊंचा ना हो, उसको सिर्फ जो इमीडिएटली उसके सामने है, फौरी तौर पे उसके सामने है, उसको वो नजर आएगा। जो फौरी तौर पे कल उसके पीछे है, वो उसको नजर आएगा। जो कुरान के जरिए से ऊंचा होता चला जाता है ना, उसको बहुत आगे क़यामत का दिन भी नजर आना शुरू हो जाता है, और बहुत पीछे आदम अलैहिस्सलाम नजर आने शुरू हो जाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नजर आने शुरू हो जाते हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आनी शुरू हो जाती है। मंजर बदल जाता है ना आपका, और फिर आपको पूरा एहसास होता है मैं हूं कहां पे। मैं आपको हाइकिंग की मिसाल देता हूं। हाइकिंग में अगर कोई किसी जंगल में पहाड़ में कहीं गुम जाए ना, तो क्या हिदायत दी जाती है बता, क्या इंस्ट्रक्शन होती है? आप हाई एलिवेशन पे जाओ, क्योंकि अगर आप हाई एलिवेशन पे जाओगे तो आपको व्यू मिलेगा, फिर आपको अंदाजा होगा आप कहां खड़े हो। जो जितना इस रास्ते पे चढ़ेगा उतना उसको वाकई में अंदाजा होगा वो खड़ा कहां पर है, मैं हूं किस मोड़ पर अपनी जिंदगी में। दिन सिरात अल मुस्तकीम, ऐसे जैसे हम अल्लाह ताला से कह रहे हो कि या अल्लाह मुझे ये भी नहीं पता मैं अपनी जिंदगी में कहां खड़ा हूं, मुझे खुद नहीं मालूम, आप बता दें, आप इस रास्ते से बता दें, आप मेरे व्यू को मेरी नजर को बदल दें, मेरी बसीरत को बदल दें। असल में यही, जहां तक मैं जितना मैं कुरान के बारे में सोचता हूं, मैं कुछ नतायज हैं जो दिल में खुप जाते हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ा नतीजा मेरे अपने लिए पर्सनली ज़ाती तौर पर वो ये है कि कुरान के बुनियादी मकासद में से है कि जिस लेंस से मैं दुनिया को देखता हूँ ना, वो बदल जाती है। अपने आप को देखता हूँ, अपने ताल्लुकात को देखता हूँ, दुनिया को देखता हूँ, दूसरों को देखता हूँ, उस पर असर पड़ जाता है। जिस तरह ना आप अगर ऐनक सनग्लासेस पहनते हो, उसका लाल रंग का शेड हो तो सारी चीज़ें लाल नज़र आती हैं, ब्लू हो तो सारी ब्लू नज़र आती हैं, कुरान हो तो सारी चीज़ें कुरान के लेंस से नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, आपका एक व्यू बदल जाता है। और यही एक बुनियादी मकसद है कुरान का कि अगर वो नज़र आना शुरू हो जाए तो सीधा रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है, और जो गलत रास्ते हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं दूर से ही। इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम। आई थिंक यू गाइस विल रियली एंजॉय दिस सेशन। ये सेशन स्पेशल। किसी को याद है इतनाब क्या होता है? मैंने कहा था इतनाब कोई चीज़ होती है, एक ही लफ्ज़ दो दफ़ा कहना, जबकि दो दफ़ा कहने की ज़रूरत बज़ाहिर ना थी, अगर आप ना कहते तो फिर भी बात वाज़ेह हो जाती, राइट? तो उसका एक ख़ास मकसद होता है। जिस तरह हमने पहले कहा था, कुरान में एक भी लफ्ज़ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई ज़्यादती नहीं है, कोई कमी नहीं है। सिरात का लफ्ज़ भी दो दफ़ा आया, अस सिरात अल मुस्तकीम, और फिर दोबारा क्या, सिरात अल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ये भी कहा जा सकता था अस सिरात अल मुस्तकीम अल्लज़ी, और इसी के साथ जोड़ के सिरात अल मुस्तकीम अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, और मुख्तलिफ उसके असालीब मुमकिन थे। लेकिन दोबारा ज़िक्र करने का मकसद ये है कि इस सड़क के बारे में अल्लाह ताला ने हमें इस राह के बारे में दो चीज़ें समझने की हिदायत दी है। एक, कि हमें दूसरों के लिए इसमें जगह बनानी है, इसमें कुशादगी है। दूसरा, इस सड़क पर चलने के लिए अगर हमें कामयाब रहना है तो हमें अपने से पीछे देखना पड़ेगा। अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने पहले से ही नेमत की। नेमत को भी समझ लें, उर्दू में हम नेमत तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेमा अरबी में नुमा से निकलता है। नुमा कहते हैं नरमी को, आसानी को, आराम को। जानवर जो आराम से चलते हैं ना, जैसे बिल्ली तेज़ चलती है, कुत्ता तेज़ चलता है, लेकिन गाय भैंस आराम आराम से चलते हैं, तो उन्हें अनआम कहा जाता है क्योंकि वो आराम आराम से चलते हैं। नईम अरबी में कहते हैं कोई चीज़ जो हो वो बहुत नरम हो। इनआम से मुराद है अल्लाह ताला ने जिसके लिए आसानियाँ पैदा की, जिसके लिए चीज़ जो है वो सहूलत वाली बनाई। सिरात लज़ीना अनअमत अलैहिम में इस बात की तरफ इशारा है कि अगर सफ़र बहुत लंबा है और सीधा है तो इसका मतलब है और ऊपर की तरफ जा रहा है। और बाय द वे, जितना सफ़र ऊपर की तरफ जाता है, जितनी रोड में एलिवेशन होती है, उतना मुश्किल होता है और थकाने वाला होता है। तो जितना इंसान थकेगा उतना इम्कान है कि वो फिर आधे रास्ते में छोड़ देगा या पीछे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा, या हमने पूछा अल्लाह से, या अल्लाह कुछ लोगों के लिए आपने ये मुश्किल रास्ता भी आसान बना दिया। इस मुश्किल रास्ते में भी आपने आसानियां पैदा कर दी, सहूलतें पैदा कर दी। वो कौन लोग हैं उनके बारे में हमें बता दें। सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, इसकी एक आसान मिसाल भी समझ लें। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो और आप कोई डिग्री कर रहे हो और आपको नसीहत चाहिए कि मैं करियर में क्या करूं, आप किससे पूछोगे? क्या आप उससे पूछोगे जो फर्स्ट ईयर में है आपकी तरह, या आप उससे पूछोगे जो ग्रेजुएट हो चुका है और अब इंडस्ट्री के अंदर है? किससे पूछोगे? ग्रेजुएट से पूछोगे ना, जो आपके साथ है वो आपकी तरह, वो भी गुमा हुआ है, आप भी कंफ्यूज, वो आपको एडवाइस तो बड़ी देगा लेकिन उसकी एडवाइस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके पास कोई तजुर्बा नहीं है, वो इस रास्ते से गुजर नहीं चुका। अल्लाह ताला ने यहाँ ये नहीं कहा उन लोगों का रास्ता जिनको आप, जिन पर आप इनाम करते हैं, नहीं, उन लोगों का रास्ता जिन पर आप इनाम कर चुके। माजी इसलिए कि हाल में जो लोग अल्लाह ताला आज उन पर इनाम कर भी रहा हो, उनके कल की कोई जमानत नहीं है। हो सकता है वो थोड़ी सी प्रोग्रेस कर लें, लेकिन हो सकता है बाद में वो रास्ते से गिर जाए। हर इंसान गिर सकता है, किसी को कोई गारंटी नहीं है। और ये भी हमारे दिन का बहुत बड़ा हिस्सा है, हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये हिदायत रास्ता है, याफ्ता है, इसको फॉलो करोगे तो जन्नत मिलेगी। हयात में से जो भी हयात है ना, उससे मैं आपसे फ़ायदा उठा सकता हूँ, आप मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपके बारे में कह सकता हूँ ना आप मेरे बारे में कह सकते हैं कि हिदायत तो इस शख्स के पास है। इस पे अल्लाह ने बड़ा इनाम किया, इसको फॉलो करोगे तो बस जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब एक रास्ते पे चल रहे हैं, हम में से कोई भी किसी वक्त भी गिर सकता है, बल्कि गिरे ना भी जानबूझ के या बगैर, यानी जानबूझ के गलती से भी गलती कर सकता है इंसान। उसके फहम में गलती हो सकती है, उसके अमल में गलती हो सकती है, उसकी समझ में गलती हो सकती है, मुमकिन है कि नहीं? तो अगर हमें कोई ऐसा रोल मॉडल चाहिए जो गारंटी हो कि इसको फॉलो करना है तुम गलती नहीं होगी, तो वो ऐसे ही लोग हो सकते हैं जो पूरे रास्ते से गुजर के अंजाम तक पहुंच चुके, फिनिश लाइन तक पहुंच चुके। उसके अलावा किसी से मैं सपोर्ट तो ले सकता हूं, लेकिन उस पर मैं 100% डिपेंड नहीं कर सकता। भाई भी बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि इस बाकी मजाहिब में क्या हुआ बताए, हिंदुइज्म में पंडित है, कैथोलिसिज्म में पोप है, और ये जो शख्सियतें हस्तियां होती हैं क्या करते हैं लोग, उन पर 100% डिपेंड करते हैं, ये मुझे आखिरी रोड तक ले जाएगा, ये मुझे मेरी जिंदगी ये संवार देगा, मेरे गुनाह ये माफ़ करवा देगा, मेरी ख्वाहिशें ये पूरी करवा देगा। यानी जो हयात हैं उससे हम सीखें, लेकिन एक हद तक। अब देखिए, सहाबा में से 10 हैं जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि 10 को जन्नत की जमानत दी गई, गारंटी कर दिया जन्नत मिलेगी 10 को। उनमें से एक उमर बिन खत्ताब हैं कि नहीं हैं? उमर बिन खत्ताब खुतबा दे रहे हैं और उनके कपड़े देख के एक औरत से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा यह आपने बैतुल माल से अपने हक से ज़्यादा लिया है। उनका खुतबा इंटरप्ट कर दिया उसने, उनकी पकड़ की, उनको एक्सप्लेन करना पड़ा, नहीं नहीं ये ऐसी बात नहीं है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। ऐसा क्यों हुआ? अगर बाकी वो जन्नत का उनको वादा कर दिया गया है और मैं उस क्राउड में बैठा होता तो मेरे जहन में तो कभी सवाल ना आता, अगर सवाल आता भी तो मैं कहता नहीं था वो तो जन्नती हैं, उनकी तो 100% पैरवी करनी है। लेकिन आप सहाबा की मिसाल देखें तो क्या देखते हैं, वो एक दूसरे से सवाल पूछते हैं कि नहीं, एक दूसरे की करेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों करते हैं? वो ये नहीं कहते ये तो बहुत पहुंचे हुए, इनके बारे में पता है नबी ने क्या कहा है, इनको तो जन्नत मिलनी है, इनको नहीं, इनसे पूछोगे तुम? सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम में जिन लोगों की मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है ना, जिसमें कोई खलल नहीं है, और जो पहुंच गए, ग्रेजुएट हो गए इस रस्ते से, वो लोग सब माजी में है, वो सब माजी में, उनकी मिसाल हमने लेनी है, और उनमें और बाकियों में एक फ़र्क होना चाहिए। होता यह है क्योंकि हमने असरात लिए हैं और मजाहिब से, मुसलमानों ने सदियों में हमने और मजाहिब से असरात लिए, और उसमें से एक असर हमने ये भी लिया कि हमने ये अकीदतमंदी शुरू कर दी कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला के ऐसे पहुँचे हुए बंदे हैं, ऐसे औलिया हैं अल्लाह ताला के, कि बस अगर उनके साथ मेरी सोबत हो जाए ना तो बस जन्नत ही जन्नत है। और यानी उनका एक ख़ास मकाम है, वो उस मकाम पर, वो हिदायत के उस रास्ते पर उनकी गारंटी हो चुकी है, अब ये गारंटीड शख्स हमारे मोहल्ले में रहता है, तो मैंने अगर इनका हाथ पकड़ के मैं ज़रा चूम लूँ और फिर इनके इनके दस्ते मुबारक से मैं पानी पी लूँ, या तो फिर मेरी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। और यह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं होता, ये और जगहों की बात कर रहा हूँ मैं। ये हज़ारों साल पुरानी गुमराही है, हमारे यहाँ नहीं होती, हम मुसलमान हैं माशाल्लाह। यही चीज़ इस्लाम तबाह बर्बाद करने आया था। हमने अब लोग मेरे बारे में भी करते हैं, यार मेरे मेरे बच्चे के सर पे हाथ फेर दें, इसके लिए दुआ कर दें, इसके लिए कर दें, आप बस एक ये लफ्ज लिख दें मेरे लिए, मेरी मेरे लफ्ज से क्या हो जाए। जैसे आप अल्लाह के बंदे हो, मैं अल्लाह का बंदा हूं, जैसे आपकी कोई गारंटी नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं, ये माइक मेरे ऊपर लगा हुआ है, इससे मेरी कोई मेरा कोई रुतबा नहीं बढ़ जाता। अल्लाह को मालूम है किसका मकाम ऊंचा है, किसका मकाम नीचे है, ये तो मेरे रब को मालूम है, मुझे इसका कोई इल्म नहीं, आपको इसका कोई इल्म नहीं। हमारा रवैया क्या होना चाहिए? फिर ये रवैया मैंने जब देखा ना, मेरे कुछ दोस्त थे जो मैं जब इस्लाम सीख रहा था और मैं मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसेस से गुजर रहा था, तो मेरे कुछ दोस्त थे उनके कुछ और इन्फ्लुएंसेस थे, तो एक साहब से वो सीख रहे थे, उनके वो बहुत ज़्यादा यानी पैरोकारी में वो लगे हुए थे, तो एक दफ़ा वो एक कॉन्फ्रेंस में आए, वो साहब बहुत पहुँचे हुए अल्लाह ताला के उलिया में से, तो वो चल रहे थे, उनके पीछे पीछे उनके तालिबे इल्म ऐसे ऐसे चल रहे थे आधे रुकू में। मैं कहा ये कौन सा इस्लाम है, ये इस्लाम तो मैंने कुरान में नहीं सीखा, ये तो मुझे सीरत में नज़र नहीं आ रहा, सीरत में तो मुझे ये मिल रहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हैं सहाबा के साथ, और कोई गैर अंदर आता है, कोई अजनबी अंदर आता है, और वो अबू बकर से बात करनी शुरू कर देता है, या रसूल अल्लाह, तो अबू बकर कहते हैं नहीं नहीं नहीं वो है, यानी उनको पता नहीं चलता था कि रसूल कौन से हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर बिन खत्ताब जिनको जन्नत की जमानत दी गई है, दरख्त के नीचे गदा बांध के सो रहे हैं, कोई रैंक नहीं है, कोई ख़ास कपड़ा नहीं है, कोई ख़ास लिबास नहीं कि वो एक दफ़ा वो आ गए तो फिर नूर आ गया। यू नो एक नौजवान मुझे कल मिला था रेस्टोरेंट में, कहता आपकी शक्ल पे बहुत नूर है, मैंने कहा नहीं ये क्रीम लगाई है मैंने कोई नूर नहीं है ये जो हमने बनाया हुआ है ना कि कुछ लोग हैं जिन पे अल्लाह का बड़ा ख़ास इनाम है, बहुत ओ हो ये ओ हो ना, ये सिरात लदीना अनअमत अलैहिम इसका तोड़ है। जिन शख्सियात से हमें इम्प्रेस होना है ना, वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, अस्हाबुल कहफ, ये वो लोग हैं जिनके बारे, ये हैं अलदीना अनअमत अलैहिम, इनके बारे में सीखो, इनसे इंस्पिरेशन लो। मैं ये नहीं कहता कि हमें अपने बड़ों की और यू नो अपने बुजुर्गों की और अपने उलमा की इज्जत नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल इज्जत करनी चाहिए, उन्हें पोप नहीं बना देना चाहिए, वो एक और मज़हब है, वो इस्लाम नहीं है, वो एक और दीन है। और जब मुझे ये बात समझ आई, मेरे कुछ हलकात में, मैं जब यंग नौजवान था तो कुछ हलकात में कोई बड़े बड़े आलिम आते थे न्यूयॉर्क में ना मुख्तलिफ जगहों से, तो लोग उनसे बड़े मुअत्तबाना अंदाज में, शेख साहब एक सवाल है, एक सवाल अर्ज कर दूँ, बस एक सवाल अर्ज कर दूँ, ये क्या हो रहा है? वो सवाल उसका वो जवाब देते तो मेरे जहन में एक फॉलो अप क्वेश्चन आता, मुझे उनका जवाब समझ नहीं आया, उनका जवाब मेरे नज़दीक कामिल नहीं था या कन्विंसिंग नहीं था, तो मैं आगे से सवाल पूछता हूँ, आपने ये बात की लेकिन आयत पे तो कुछ और बात हो रही है, तो आप इसको कैसे रिकनसाइल करते हैं? इतनी सी बात। और जो उनके सारे फैन बैठे हुए थे ना, वो क्या करते हैं पता है? पता नहीं है कौन है। जैसे एक दफ़ा हज़रत ने जवाब दे दिया तो किसी की क्या मजाल आगे से पूछने की। मैं तो समझा था मैं एक ऐसे ऐसे दीन को फॉलो कर रहा हूँ जिस दीन में फरिश्ते, जब फरिश्तों को कोई बात समझ नहीं आई कि आदम को क्यों बनाया, वो तो खून बहाएगा, उन्होंने बेटोक पूछ लिया अल्लाह ताला से, आप क्या ज़मीन में ऐसी मखलूक डालेंगे जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? पूछा भी किससे? अल्लाह से। और अल्लाह ने नहीं कहा तुम किससे पूछ रहे हो, तुम्हारी ये मजाल? ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का रास्ता बगैर पूछे, बगैर क्रिटिसाइज किए फॉलो करना है और आंखें बंद करके फॉलो करना है, वो कहाँ है? वो माजी में है, वो माजी में सातना आराम था ने, वो पीछे हैं, वो अभी नहीं है। अभी हम एक दूसरे से सीख सकते हैं,
0: लेकिन हम में से कोई रास्ते की इंतहा तक नहीं पहुंचा, तो हम एक दूसरे से, हम मैं आपके फायदे के लिए, आप मेरे फायदे के लिए। और ये जब मैंने, मेरे अंदर ये रवैया आ गया ना, इसको कुछ लोग बदतमीजी कहते हैं, मेरे नज़दीक ये इल्म का रास्ता है, इल्म का सफ़र है और हिदायत का सफ़र। अल्लाह ताला ने मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से मेरे लिए बड़े अजीब अजीब दरवाजे खोले और दुनिया के बहुत सारे उलमा जो हैं उनसे मेरी एक्सेस हुई, उनसे बात करने का मौका हुआ। तो मैं बात करने से पहले ही मैं कह देता हूँ, सर मैं ये रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा ना, ये वीडियो पे डालना चाह रहा हूँ, मैं अपनी अपने फहम के लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो जो जहन में सवाल आएगा मैं पूछूंगा, बदतमीजी लगेगी शायद आपको, लेकिन मैं फिर भी करूँगा सवाल, तुमने कहा यही पसंद है मुझे, और फिर मैं करता हूँ वो बात, कहते हैं फिर मैं कहता हूँ आपकी दिल में कोई तो क्यों नहीं बनती, इसलिए नहीं बनती, फिर हम डिबेट करते हैं, फिर उनको मेरी बात अच्छी लगती है, वो बात मेरी बुरी लगती है, लेकिन हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करोगे ना तो आपकी, आपके जहन में, आपकी सोच में, आपके फहम में इजाफा होगा। अगर आप यानी लिहाज रखते हुए सवाल ही ना पूछो, जहन में सवाल रहे, बेअदबी होती है, तो आपकी असल वफादारी इल्म से नहीं है, हिदायत से नहीं है, आपकी असल वफादारी लिहाज से है किसी के। मुझे हिदायत के रास्ते में मुझे किसी और चीज़ का लिहाज नहीं है, मुझे बस हक का लिहाज है, बस मुझे हक चाहिए। और मैं वो ये भी ऐन मुमकिन है, बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं कोई चीज़ सीखा, मैंने कोई चीज़ सीखी, मुझे लगा कि ये सही है, दो साल बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बात सही नहीं है, और ऐन मुमकिन है कि सही नहीं है, और हो सकता है कोई चीज़ अभी मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ कि ये सही है, और बाद में कोई दलाइल सामने आए और कोई बात सामने आए और पता चले कि ये बात सही नहीं थी, मुमकिन है, क्योंकि इंसान से गलती होती है, इंसान सीख रहा है, और सीखने के रास्ते में गलत नतीजे पर पहुंचना भी उसका हिस्सा है, उस सफ़र का हिस्सा है। लेकिन इन अल्फाज में सिरात-ए-लज़ीन अनअमत अलैहिम बहुत बड़ी, बहुत गहरी हकीकत मुजमर है, और ये अल्लाह ताला से जो हमारा ताल्लुक है उसको ख़राब होने से बचाया गया है इन्हीं अल्फाज के ज़रिए से, सिरात-ए-लज़ीन अनअमत अलैहिम। फिर दूसरी बात ये भी बता दी कि जो लोग इस सफ़र के इंतहा तक पहुँचे ना, वो इसलिए कि वो बहुत पहुँचे हुए लोग थे, कोशिश उनकी थी, लेकिन आसानी किसने बनाई, तौफीक अल्लाह ने, अनअमत अलैहिम, ये नहीं कहा सिरात अस्सालिहीन, सिरात अल-अंबिया, सिरात अश-शुहदा, वो अंबिया सालिहीन कितनी अजीम शख्सियतें हैं, लेकिन हाईलाइट क्या किया गया यहाँ पे, हाईलाइट किया गया कि अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या किया, आसानी बनाई। अगर सोचो जरा, अगर यहाँ कहा होता, क्योंकि एक और मकाम पर कुरान में فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا, इसकी तफसीर की गई है, किन पर इनाम किया गया, नबी सिद्दीक यानी सिद्दीक जिन्होंने अम्बिया की बात को सच माना, शहदा आप जानते हो शहदा कौन है, सालिहीन अच्छे लोग, चार ग्रुप बताए। अगर ये यहाँ लिखा होता, कुरान ने ये बात कही होती यहाँ पर, सिरात النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, अगर इस तरह बात की होती तो असल में उनके मकाम की बात हो रही होती, अल्लाह ताला को जो उन पर इनाम है उसकी बात नहीं हो रही होती। वो तो अंबिया थे, वो तो शुहदा थे, वो तो सिद्दीकीन थे, वो तो सालिहीन थे, हम तो वो नहीं है। यहाँ कहा उनका रास्ता बताएं जिनके लिए आपने आसानियाँ की। अब जिस तरह, इस तरह से कहा तो क्या बात सामने आ गई, मेरे लिए भी आसानी कर सकता है, उनके लिए की तो मेरे लिए भी कर सकते हैं। ऐसा रास्ता बताएं कि जब मैं इस रास्ते पर चलूँ, एक दो कदम चलूँ, तो आगे आसानी कहां से आएगी, अल्लाह की तरफ से। आउन का मतलब क्या था, आउन का मतलब क्या था, पहले कोशिश फिर मदद। यहां पहले कहा रास्ता बता दे, रास्ते पे चलूं तो आसानी कहां से आएगी, अल्लाह से आएगी। वही बात दोबारा कही जा रही है, सिरात-ए-लज़ीन अनअमत अलैहिम, ठीक है। अच्छा,
2: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना यूट्यूब चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। Coming up next time on Akhri Mojza.
0: तो तवक्को ये थी, हमें सीधा रास्ता दिखाएं, उसकी हिदायत दें, उनका रास्ता जिनको आप पहले भी हिदायत दे चुके, हिदायत ही तो मांगी थी, तो हिदायत याफ्ता लोगों के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन हिदायत के लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, इनाम, यानी एक तब्दीली लाई गई है कलाम के अंदर, इसको भी नोट करने की जरूरत है। सिरात-ए-लज़ीना हदैताहुम के बजाय सिरात-ए-लज़ीना अनअमत अलैहिम, इससे क्या फर्क पड़ता है।
3: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: Assalamu alaikum, my name's Zara from Picton Solicitors. I practice in family law. Wishing families peace and understanding, inshallah. Please continue listening to Inspire FM.
5: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
6: Did you see that guy on TV?
7: What, that No Comment guy?
6: Yeah, he was sick. What was his name?
7: I think it was Atiq Malik.
6: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
8: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
6: Liberty Law, there when you need us most.
9: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton, on the 27th and 28th of May from 1pm to 9pm for the UK's biggest and most affordable Eid festival. Enjoy funfair rides for just £1 to £2, amazing world food stalls, desserts and sweet treats, games and activities for the whole family, shopping stalls, festival vibes and so much more. Best of all, entry is absolutely free, with free on-site parking and free entry too. Bring your family and celebrate Eid together at Inspire Eid 2026, where the community comes together to celebrate. Find out more now at inspireeid.org, subject to moonsighting.
10: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
11: Your sacrifice, a gift of hope. As Eid approaches, think of those who cannot celebrate. Families without food, without comfort. This year, your Qurbani can bring them relief. A simple act of sacrifice. Visit www.familiesrelief.org.uk or call 0114 365 4454. Give your Qurbani. Share the blessing.
12: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Read, write, revise, repeat. Put in the work, make your mark, light up the exam, ignite your spark. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.